0: अस्सलाम वालेकुम। नोदे है कि मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम के 11 घड़ी तीरी हो गया खबर आए कि मैं बदल कुरी फातमत समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायतु ना खिद में फोर को दे दावलत के मुआसिसात अंहर दना कुर मुके मसके हुट्टु में ने कुरिया के दवाने कमा राइसल जम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइस विदार विचे एमन कफान मेहम विदार वी अलिफ्ताल के पब्लिक सर्विस दुवाहा कुलिकें सोशल मीडिया का हिस्सा कुरे भी पोस्ट एका आबादी के सिखी हालत आगुड़ुरी एम ए फाहु के मालूमाता तफात हिसाब तक दिनगत म्याहर के तिरेगा मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे कुरुमा निम्मा फवाकमा सिखता आयलाया इज्तिमाई एही आबहे वसीर कीला अली विदारविजे। राज्य के जकात हाउसुन थैलेसीमिया पेशेंट उन्ना बेनवा बोन मेरो ट्रांसप्लांट 2.5 मिलियन रुपया फोर को दीफी जकात हाउसुन विदारवी एक मकंडाला फवा फैसा नेशनल सोशल प्रोटेक्शन एजेंसी इंस्पायर जमा को फवा कमा बोन मेरो ट्रांसप्लांट हेदम राज्य बेरकुदिन फोनवा मुंदनी जकात फंड के दशुं ए फैसा देनी 21 फेब्रुवरी देहा सबवी हुगा इस्लामी गंतका बेहे बुजाराया सिखता बेहे बुजाराया देमेदु सोयकुरे फावा ए बसुमे के दशुं। मौसमी बदलतका तिमावेट्टा हकते आबेहे बुसारां विलुं वेशी ग्रांट प्रोग्राम रस्मी कों इफ्तिताहु कोफी मी मौसमी बदलतकुं तिमावेट्टा कुराने देवे असरतका विलुं तेरवुमशा तिमावेट्टा रट्टे देमेहेट्टेनवि उसूलतकुं कानाके यकीन कंकशवर कुरुमुगे मकसदगा कुरियकेंदा प्रोग्रामे हादाल हनिमादू के काउंसिल जुलाई माह ग्रांट दू कुरानी एयथोल हिरमरदू अकंडाला ग्रांट हिमना गेंकमा लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी विदान वेजे सरकार वनी हिरमरदू रयितुं हनिमादू बदल कुरमनी माफा आदि अलंग इंतखाब वे लोकल काउंसिल आए को एरशुगे रयितुं इदारी गोतुं हनिमादू के रयितुं गे गोतुका वनी हिमनाफा मिफार गे इंतखाब का एरशुगे रयितुं वोट दीफा वनी वेस हनिमादू के काउंसिल इंतखाब कुरमा। गौमी दिरासा फंडुगे फुरतम एही एमएनयू मेदुवेरिकों होवनु फरायतका रस्मी कों हवाल कोफी गौमी दिरासा फंडकी राज्ये का दिरासा कुरुमगे सकाफते कायम कुरुमगे बेनुमगा उफद्दा फवा फंडे। मी खबर आए कि मी गडीग दिवे हेफेमुन दन्नमुन ए खबर दनवानी मुनी देन दिवे हेफेमुन खबर दनवा देनी मी दु हवीरो हतरि चहायरो खबर अडो सवीते शुक्रिया।
1: Nur die Ecke Megahertz, die wir hier finden.

0: No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती. ना का मतलब ना ही होता है. माई क्लाइंट सेड नो Your Honor. And these boys must realize, no का मतलब नो होता. उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना, नो मीन्स नो.
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोरे को बालाना साड़ी शोया. जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट. कौम में हफ्ता एक वस्कूरी एक गेंदा बालालन साली मिशो के गेनेस ते केस्त डायलोग गे एम में गीने सुवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफारो नगा गुरोतुं खास हादिया एली बेने. एम में गीने सुवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशो का.
2: केस्त डायलोग
3: बाला

पैरों में घूमते हो, किस घड़ी को ढूंढते हो, एक पल को ठहर जाना, जो कभी फुर्सत मिले तो, किन से शिकवा है गमों का, किन से है खुशियां जुड़ी, जैसे भी गुजरे थे दिन वो, जिंदगी में अब नहीं।